ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं, और जब ये सरगोशियां करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है,

आपने। और ये जो क्रैक आ गया ना और अब फूल खिलने लगा, तो इस अमल को कहते हैं फुसूक। ठीक है, यानी अपने कवरिंग, अपने छिलके से फट के बाहर निकलना। इसी से फिर निकला है हद पार करना, अपनी हद से बाहर निकलना। फिस्क कहते हैं नाफरमानी को, क्योंकि फासिक अल्लाह की इताअत से बाहर निकल रहा होता है। अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत। जब कोई अल्लाह की इबादत नहीं करता, इताअत नहीं करता और नाफरमानी करता है, तो वो दरअसल बंदगी की लिमिट से बाहर आ रहा होता है। ठीक है, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, नहीं गुमराह करता इसके ज़रिए मगर फासिकों को। कौन है फासिक? अल्लवीना, वो लोग, यनकुजूना, जो तोड़ते हैं। वा नून किसकी अलामत है? और या गायब की, वो। और बाकी क्या रह गया? नून काफ दाद, नक्ज। नक्ज है उर्दू में भी आता है, तोड़ना। नक्ज का क्या माना? तोड़ना, और ख़ास तौर पर अहद तोड़ना। वैसे तो तोड़ने के लिए और भी लफ्ज़ हैं, मसलन अरबी ज़बान में कसर का माना भी तोड़ना होता है, लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ किसी चीज़ को पक्का करने के बाद तोड़ना, जैसे किसी चीज़ को खूब मजबूत कर लेना और फिर उसके बाद उसको तोड़ देना, तो उस तोड़ने के लिए नक्ज़ आता है। किस तोड़ने के लिए आता है? पक्का करने के बाद किसी चीज़ को तोड़ना, यानी खोलना। यनकुज़ूना अहद अल्लाही, अल्लाह का अहद। अहद कहते हैं कौल, करार, अहद व पैमान, माहदे के लिए। अहद अल्लाही, अल्लाह का अहद। मिन से बादी, बाद, मीसाक ही। अच्छा, ये जो मिन है ये भी जायद है, बादी से भी माना पूरा हो रहा है। मीसाक, मीसाक का रूट जो है वाओ था काफ है, वसक, सिका। वाओ था से जिसको हम कहते हैं ता था, मीसाक ही, वसूक, पक्का करना, कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके पक्का करने के बाद, यानी इकरार को, अहद को खूब पक्का करने के बाद क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। वाह, और यक्तऊना, काट देते हैं। यक्तऊना में भी आप देखिए वाव नून किसके लिए? जमा के लिए। और रूट क्या बनता है? काफ का ऐन, कता। उर्दू में इस्तेमाल होता कता करना, मुनक़ते करना, कता करना, कता ताल्लुकी, ये वही कता है। क़िता भी कहते हैं, क़िता किसको कहते हैं? पीस को, टुकड़े को, काटी हुई चीज़, अलग की हुई, काटते हैं। माँ जो, अमरा, हुक्म दिया, उर्दू में अमर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल्लाहु, अल्लाह ने, बिही, साथ उसके, किसके? मीसाक के या अहद के, ये अमर की तरफ इशारा है, यानी जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया। अन ये के, यूसला, जोड़ा जाए। यूसल, वाओ स्वाद लाम, इसका रूट है वसल। वसल का माना होता है जोड़ना, मिलाना। पीछे पड़ा वसल, कहीं नहीं आया। किस में पड़ा था? अल्लज़ी, इसम मौसूल मैंने बताया था और उसमें वसल बताया था। मैं ये सोच रही थी कहीं ना कहीं वसल की बात हुई है। वसल का माना होता है जोड़ना। उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, ये चीज़ मुझे मौसूल हो गई, क्या मतलब? मिल गई, यानी मुझसे आके जुड़ गई, लग गई। अयो सलाह के, जोड़ा जाए। वा और, युफसिदूना, वो फसाद करते हैं। फा सीन दाल, फसाद, बिगाड़। दो तरह का होता है, हिस्सी और मानवी। ये बोर्ड पे मैं लिखती हूँ, ये टर्म्स मैं अक्सर यूज़ करूँगी, फिर आपको उनका माना आना चाहिए। फसाद कहते हैं करप्शन को। करप्शन दो तरह की होती है, एक होती है जहनी और एक होती है जिस्मानी। हिस्सी इज़ जिस्मानी और मानवी इज़ जहनी, जिसे हम कहते हैं जहनी बिगाड़। जहनी बिगाड़ क्या होता है? किसी का दिमाग ख़राब हो जाना, हम कहते हैं इसका दिमाग ख़राब है। बोलते हैं कभी फलां का तो दिमाग ख़राब हो गया, यानी उसके दिमाग में खलल है, यानी उसकी सोच बिगड़ गई है, सोच ही फसाद का शिकार होगी। और बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि दही ख़राब हो गया, तो वो क्या है? फसाद, हिस्सी। हिस्सी मतलब ये कि सामने नज़र आ रहा है खाना या कोई चीज़ ख़राब होगी, बिगड़ गई, अब वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक, वयुफ़सिदून फ़िल अर्ध, और वो फसाद करते हैं फ़िल अर्ध, ज़मीन में।

0: सिर्फ करना है, इनको और कुछ नहीं आता, इनमें बेसिक इंटेलिजेंस है। हम में बहुत कुछ है, आर्टिकुलेशन की एबिलिटी से लेकर, इल्मुल बयान से लेकर, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम दुनिया को मुसख़र कर रहे हैं। दुनिया हमारे ताबे है, सब कुछ हमारे अंडर है, हम कॉन्कर कर चुके हैं दुनिया को। तो जब हमें ये सोच कर करने से होता है, हम 40 साल तक क्या कर रहे होते हैं, वरीइंग से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, परेशानी आती है, डेस्परेशन आती है, नीडीनेस बढ़ती है, आपकी फीलिंग्स बार बार हर्ट हो जाती हैं। तो वरीइंग से आप अपने आप को रॉब कर लेते हैं, आपकी एनर्जी से, प्रोडक्टिव थॉट से, क्लैरिटी ऑफ माइंड से, चीज़ों को देख नहीं सकते आप क्लियरली, क्योंकि आप वरी कर रहे हैं 30-35-40 साल तक। और थिंकिंग शुरू कर देनी चाहिए तो शुरू से ही, जिसमें आपको तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने हो जाते हैं। जब हम इतना अर्ज के साथ, इतनी पागलपन के साथ किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे, तो आपको इर्द गिर्द नज़र आना बंद हो जाता है। और कई दफ़ा जो चीज़ असल में आपके लिए, वो आप उस चीज़ की साइड पे पड़ी होती है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रिंजेस के ऊपर वो चीज़ें होती हैं, और विल आप टनल विजन में चल रहे होते हैं सिर्फ लॉन्गर रन में, तो वो आपको कभी नज़र नहीं आती। और रास्ते में कई लोग जो आपके साथ होने चाहिए थे, कई अपॉर्चुनिटीज़, कई इन्वायरमेंट्स जो आपके लिए थे जिसमें आप कमाल कर सकते थे, वो छोड़कर उन चीज़ों के पीछे, उन लोगों के पीछे, उस पावर या कुर्सी के पीछे आप भाग रहे होते हैं, जो आपके एंड में जब आपके हाथ आती है तो सब कुछ आप लूज़ कर चुके होते हैं, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी, स्पिरिचुअल हेल्थ भी, रिश्ते भी, और बहुत सारी चीज़ें भी। तो इसको नज़र, ये समझना, ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, ये जिस बंदे को इतनी सी बात समझ आ गई, ज़िंदगी में उसको तकलीफ़ें, परेशानियाँ, फिर वो ढूंढा करेगा कि मुझे कोई तकलीफ़ मिले, कोई परेशानी मिले, कोई मसला मिले, मैं हल करूं। फिर आपको ये जो हर चीज़ आपके दरवाजे पे कोई तकलीफ़, परेशानी, मसाइल डाल जाते हैं ना लोग, ये ख़त्म हो जाएगा, आपका दुखना बंद हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा आपको, और फिर आपकी मर्ज़ी है, पिक एंड चूज़ करें। आप इससे बेहतर अगर क्लिप कोई समझता है कि रिकॉर्ड करा लेगा, तो वो नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपके सर है, सारे सेहरे आपके सर चले जाते हैं सजीला जी बार बार।
1: ये सब कुछ आप करते हैं,
0: ये हुआ क्या था? अब बताएं, ये जो क्या बताया है, क्या समझ आई?
1: आपने तो मसले का हल, मसले की जड़ ही आपने खत्म कर दी।
0: मैंने, पता है ये क्या किया है
1: जी?
0: ये मैंने, एक बंदा था जो बड़ा वीक था, ठीक है, वो किसी से मोहब्बत करता था, तो वो उस बंदी को कुछ बता नहीं सकता था कि मैं आपसे मोहब्बत फरमाता हूँ, अब हमारी शादी हो जाए, अब हमारे दो बच्चे हों जिनकी शक्ल मेरी तरह, अकल आपकी तरह, खुदा न खास्ता हो जाए, ठीक है, ये सब वो कह नहीं पाता था। तो उसका एक दोस्त था, जो एक बहादुर किस्म के बेवकूफ़ दोस्त होते हैं ना, जो सिर्फ उंगली करना जानते हैं, वो आपको मरवाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, तो वो आपको खामखा की शह देते हैं, और फिर आपसे वो कहते हैं, जी आपने ऐसा करो, इस दफ़ा जाओ, मर्द बनो और जाकर कह दो सब कुछ, ठीक है। तो वो बंदा फिर बड़ा तैयार श्यार होकर खुशबू वगैरह लगा के, यू नो, जाता है, और वहाँ पर उस बंदी के सामने खड़ा होता है, वो उसने अपनी स्पीच पूरी तैयार की होती है, और ऑफ कोर्स जब आप इतने डेस्परेट होते हैं, घबराए हुए होते हैं, हार्मोन्स बम्बार्ड कर रहे होते हैं, आपकी बेसिक यू नो चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए आप इतना बड़ा ड्रामा करके यू नो घबराए हुए, अगला बंदा बेचारा आम सा इंसान है, वही हर वक्त घबराया घबराया रहता है, उसको लगता है मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे में तो कोई खास बात है नहीं, लेकिन अब आपके दिमाग में घवा बना हुआ है, तो उसने उसको मतलब हवा बनाए हुआ है, ठीक है, तो अब आप उसके सामने खड़े हो गए, तो ऑफ कोर्स आप अपना सारा लेक्चर भूल गए, ठीक है, मैं तो, हाँ तो, वो तो, नहीं तो, ये तो, लेकिन तो, फलां तो, मैंने तो, अब जब ये कहने शुरू होते हैं तो उसको, तो अब वो दोस्त पीछे से उसे कहता है, बोल सब कुछ, ठीक है, तो दोस्त की तरफ देखता है और फिर लड़की की तरफ देखता है और एक सांस लेता है लंबी से और कहता है, सब कुछ। समझ रही, ये मैंने इसका एक छोटे से लतीफे में पूरी कहानी डाल दी है ऐसे ही, और मैंने पूरा समा बांधा है ताकि हर बंदे को नजर आए, ये दोस्त कौन है, वो दूसरा कबीला दोस्त कौन है, वो लड़की बेचारी सामने कौन है जो दुपट्टा सीधा करके घबराई हुई है, ठीक है जी, और आपकी परफ्यूम से उसका सांस बंद हो रहा है और उसकी बॉडी ओडोर से आपका बंद हो रहा है, लेकिन आप जज्बाती हुए हैं इस वक्त, ठीक है जी। लोग बड़े कमीने हैं जब वो कहते हैं, सर आप तरह खुल के हंसते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। अरे भाई, मैं रोज हंसता हूँ, लेकिन इतनी सीरियस बातें हो रही होती हैं लाइफ में, तो मैं लोगों को हंसाता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, उन पे भी हंसता हूँ, हर वक्त लोगों की टांगें खींचता रहता हूँ, लेकिन शो में मैं कहाँ हंसूँ, कोई मुझे हंसाने वाला बंदा आए मेरे से हंसने की कोई बात करे, ठीक है, फिर हम भी हंसेंगे आहिस्ता आहिस्ता।
1: आप तो हमें इतना हंसाते हैं, हमारे तो मुंह दुखते हैं उसके बाद,
0: क्योंकि सीरियस भी तो बातें करके सर भी तो दुखाता हूँ, तो फिर मेरा हक बनता है मैं मुंह भी दुखाऊं हंसा हंसा के, क्योंकि दुनिया में जो लोग आपको बहुत हंसाते हैं ना, फिर यही लोग

0: आपको बहुत रुलाते भी होते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन आपने ये सोचना होता है कि जिस इंसान ने हंसाया है उसको कुछ थोड़ा बहुत लेवरेज दें कि वो कभी कभी आपको रुला भी सके, क्योंकि हंसाया भी तो उसी ने है ना। ये बिल्कुल ऐसा है, वही रब है हमारा जिसने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ जो हम भूल जाते हैं, और थोड़ा बहुत दुख, थोड़ी बहुत तकलीफ, थोड़ी बहुत परेशानी, वो भी हमें इतनी बड़ी पहाड़ जैसी इसलिए लगती है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों को नहीं जानते। हम गजा के लोगों को कभी नहीं मिले उनको जानने के क्या है, हम कश्मीर के लोगों को कभी नहीं मिले, हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो लोग खा पी नहीं सकते उनको कभी नहीं मिले, अंडर नरिश्ड हैं, हम बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जिन लोगों को नहीं मिली, कई मजबूर गरीब लोग जो अदालतों में, जेलों में सालों से सड़ रहे हैं बिना किसी गुनाह के, हम कभी उनसे नहीं मिले। तो जब हमें नहीं पता होता ना किसी चीज़ के बारे में, तो हम समझते हैं जो हमें पता है बस वही सब कुछ है और मुझे सब कुछ डिज़र्व करता हूँ। हालांकि अगर हिसाब किताब पे दुनिया में रब आ जाता ना, तो बहुत सारे लोगों के पास जो अभी है वो कुछ भी ना रहता, और जो कुछ मिला हुआ है वो उनसे ले लिया जाता। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन चीज़ों का जो हमें बिना अर्न किए, डिज़र्व किए मिला हुआ है। हमको सिर्फ कोशिश करके इसका शुक्र अदा करना है, और एक स्टेप फर्दर जाना है तो इसको डिज़र्व करना है, एक स्टेप और फर्दर जाना है तो इसको लोगों के साथ शेयर करना है, चाहे वो पैसे हैं, चाहे वो डोनेशन इन काइंड है, चाहे किसी से अच्छी प्यार भरी बात है, या कोई आसानी पैदा कर सकते हैं आप किसी भी अच्छी चीज़ में, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा बूटा लगा सकते हैं जिसके साए में कल कोई बैठेगा, कोई ऐसी कोई ऐसा ज़कात का काम, कोई खैरात का काम, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोगों की भलाई हो सके, उनकी ज़िंदगी, उनका मकसद क्लियर हो सके, यही सब कुछ है और यही बचत है। बाकी सब कुछ खाया पिया, गिलास तोड़ा, बाहर आने निकल आने, आखिर में ये किसको नहीं पता, यही हिसाब किताब क्लियर लिखा हुआ है। दुनिया में रब की किताब वाहिद चीज़ है, उसने पूरा हिसाब किताब लिख कर आपको दे दिया है, ये करोगे तो ये होगा, तुमसे पहले ने ये किया उनके साथ ये हुआ, देखो तुम कहीं ऐसे ना बन जाना, सोचो समझो देखो उसको, इस तरह चीज़ों को डील करो, जो चाहो खाओ पियो, उठो बैठो घूमो, उसके साथ इस चीज़ को पकड़ के रखना है और टुकड़ों में नहीं बटना है, कुछ एक्चुअल में नहीं है, और अगर नहीं करोगे तो ये ऐसा होगा और इस हद तक खतरनाक होगा। और ये दूसरा जो करते हो जिसमें छोटे से अच्छे कुछ मुट्ठी भरने एक काम, आसानी पैदा करने वाले, हकीकत को जानने वाले, लोगों के को मदद करने वाले, यतीम गरीब मस्कीन के साथ या जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनके साथ मदद कर देने वालों के लिए, ये है और ऐसा ऐसा ऐसा है जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं है। तो अब आपने ट्रेड करना है या नहीं करना, ये आपके लिए है। और इसी सब के बीच में रहते हुए, सब कुछ इन्जॉय करते हुए, रब की मेहरबानियों को भी आप थोड़ा थोड़ा करके भी वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। काम इतना आसान है, इतना आसान है, इसीलिए उसको गफूर रहीम कहते हैं, क्योंकि सब कुछ दे दिया है, उसके बीच में तुम्हारी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए तुम्हारी ये सब ये किया जाता है, और आखिर में होगा, होगा वही जो उसने कहा है। कुछ भी हो जाए, दुनिया का कोई बंदा कुछ भी कह दे वो नहीं होगा, पावरफुल से पावरफुल आदमी कुछ भी कह दे वो नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उसने कहा है वो होता आया है, होता रहेगा। इसके अलावा अगर कोई आपके पास और भी, इसीलिए जिस तरह वो बात करता है, जैसे कम्युनिकेट करता है, जैसे वो चीज़ों को करके दिखाता है, इतनी ऑथेंटिसिटी सिर्फ उसमें है, इसीलिए वही अजीम तर है, और इसीलिए वो ऑल नोइंग ओमनिपोटेंट है। तो फिर लड़ाई किस बात की है? और ये जो बहुत मज़े के जो ना इज़राइलाइट्स को जो इज़राइल कहते हैं, उसका मतलब है द वन हु रेसल्स विद गॉड। यही हम करते रहते हैं, हम हर वक्त खुदा के कानून से रेसल करते रहते हैं, हमें दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं ना राइटिंग ऑन द वॉल, नविश्ता दीवार जिसे कहते हैं, हमें पता है क्या हमारा हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हम किस काबिल हैं किस जोगे हैं, सब पता है हमें, इस वक्त क्या हो रहा है आगे क्या हो रहा है, हम बड़े रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट हैं, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन हम सिर्फ जोर लगाते रहते हैं, खामखा जोर लगा के कुछ नहीं होता। हमने भी लगाया 35-36 साल, सबका सब ज़ाया हो गया, जब समझ आया तो ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो कुछ चाहिए था वो वैसे ही मिल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, तो इतना ज़ोर क्या लगाना, इतना वरी करने की, इतना पागल होने की, इतना जहनी मरीज़ होने की, इतना लोगों को पे जज्बात और हिजान अंगेज़ किस्म की वॉर लॉन्च करने की, कोई तुक नहीं बनती है, कुछ भी नहीं, खामखा का ज़िया है। और जिसको नहीं समझ आती वो तो करता रहता है, रोज़ करते हैं, देखते रहते हैं, जिसने किया वो सिर्फ रास्ता ये बता सकता है, करके दिखा सकता है, बाकी जिसका जो दिल चाहता है वो करे। ठीक है जी, कैसे बनाती हैं आप ये क्लिप?
1: मैं कुछ नहीं करती साला, सब कुछ आप करते हैं।
0: यानी कि फिर वही वाली, ये तो आप बिल्कुल वही कह रही हैं जो मैं भी कुछ नहीं करता, ये सब आप करते हैं क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं करके अगर ये बनता है और आपका भी कुछ नहीं करके ये बनता है तो अल्लाह करे हम सारे अच्छा हमारे बारे में शायद उन्होंने कहा था ना वो जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, तो ये था वो कमाल। अब हमको समझ आए, हम तो जलाल से जमाल तक, बल्कि जमाल से जलाल तक पहुंचे और फिर कहीं ना कहीं हमें नजर आया कि हम कमाल मिस कर रहे हैं। और ये सारे के सारे मेरे नेफ्यूज के नाम है।
1: अच्छा, ये जो भी आपने बताए
0: हाँ जी सारे के सारे बहुत टैलेंटेड और कमाल बच्चे हैं
1: माशाल्लाह।
0: सारे अपने आप को हमसे बहुत समझदार समझते थे समझते हैं और समझते रहेंगे। और एक एक मेरे भांजे ने एक दफा मुझे कहा जवानी में कि मामू अगर मैं आपकी तरह हैंडसम होता ना, ठीक है ये बात है आज से कोई 25 साल पुरानी, और वो भी बाद में उसने भी आर्मी वगैरह ज्वाइन किया, मामू मैं आपकी तरह होता ना तो मैं लुट डाल देता, ठीक है। तो मैंने आगे से कहा मेरा पुत्र अल्लाह इसीलिए गंजे को नाखून नहीं देता क्योंकि वो अपना सर छील लेगा, तो रब ने तुझे मेरी तरह नहीं बनाया क्योंकि उसको पता था तो लुट डाल देगा।
1: तो
0: लुट डालने की जरूरत नहीं है, लुट आपके होने से वैसे ही पड़ जाती है। आज वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा अपना रैंक्स वैंक चीज़ें शीज़ें ये सब कुछ करता है, तो मुझे उसके बारे में कुछ उसने बड़ी एक दो बातें पता, बड़े साल हो गए तकरीबन 15 भी मुलाकात नहीं हो सकी, वो अपने काम पे होता है, तो एक दो बातें मुझे पता चली जो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो जब मुलाकात होगी। और ये वो बच्चा हुआ करता था जब मैं स्कूल में हम पढ़ा करते थे, तो हम सीनियर थे स्कूल में और इसको नया नया स्कूल में दाखिल किया, तो वो स्कूल वही था तो जहाँ हमारी क्लास थी ना उसके बिल्कुल साथ वो घंटी लगी हुई थी, वो यू नो पीरियड दिखाने के लिए नहीं, वो क्लास का जो पीरियड ख़त्म होता है तो वो जो घंटी बजती है तो बिल्कुल हमारे कान के पास लगी होती थी, तो इसको हमने नया नया स्कूल में दाखिल किया उसी स्कूल में, उनके रिश्तेदारों का भी था वो, तो स्कूल में हम बैठे हुए हैं, हमारी टीचर कोई बड़ी सब मुश्किल चीज़ मतलब पढ़ा रही है और हम बैठे हुए हैं वहाँ क्लास में, हम भी 5वीं 6वीं में थे 10-12 साल के तो एकदम खिड़की में से आवाज़ आई मामू
1: आप लोग का एज डिफरेंस कम है जिस
0: मैं तो जब पैदा हुआ था तो बताया तो है, मैं जब पैदा हुआ था तो मैं मामू था।
1: अच्छा
0: हाँ जी, मेरी मेरी एक भांजी मेरे से 1 साल बड़ी है, हमें पैदा करने के लिए बड़ी तकलीफें काटी गई, 35-34 साल की तपस्या की गई।
1: आप बता रहे थे खान जी,
0: उस तपस्या के बाद हम पैदा हुए, पठानों के लिए उनको लगता था हमारी बड़ी जमीन है जो कि बाद में पता चला इतनी थी नहीं और उस गांव में गांव के जो ना जो कुछ लोग होते थे जमींदार उसमें हम लोग हुआ करते थे, और हमें बड़ा मतलब बड़ी बात थी हमारी पैदाइश, पहली दफा गांव में वो केरोसिन ऑयल बदबूदार पंखा आया जो मेरी माँ लगा के बाहर चली जाया करती थी, और जो हमारी घुटी जिसने डाली थी वो मेरी माँ कहती हमसे गलती होगी, हमने गलत बंदे से घुटी डाली। आपको पता है मैंने शायद किसी शो में बताया था मुझे घुटी किसने डाली बचपन में, खान जी जो थे ना उनकी जो नेचर थी पर्सनैलिटी थी जरा मेरी टाइप थी ना, वो अपनी तरह का दूसरा इंसान दुनिया में लाने से डरते थे, ठीक है ख्वाहिश बहुत थी उनकी, वो पीर पीरों फकीरों को नहीं मानते थे लेकिन मेरे चक्कर में उन्होंने बड़ी चादरें चढ़ाई, ठीक है तो वो भी मान गए, सब कुछ मान गए क्योंकि जब औलाद चाहिए होती है चीज़ें चाहिए होती हैं प्रेशर इतना होता है, तो उन्होंने खान जी से मेरी माँ कहती है मैंने खान जी को बोला घुटी डाल दे, तो उन्होंने कहा नहीं किसी और ही को लुपाओ, ठीक है। तो उस वक्त गाँव में एक बंदा हुआ करता था उसका ना यद खान जैसा कुछ नाम था, वो सुबह सुबह माश्की था, वो सुबह सुबह चमड़े के उस जमाने में लेदर के बड़े बड़े
1: हाँ जी पानी जो डालते थे
0: हाँ, तो वो गांव में आके घड़ों में सुबह सुबह पानी डाला करते थे, तो वो हमारे सारे जो गांव के जो हमारे जो लेम के घर थे उसकी ड्यूटी थी कि वो सुबह सुबह ये पानी डाला करे आके, तो वो सुबह पानी डालने आया, वो मलंग सा आदमी था, उसका कोई घर बार कुछ कुछ नहीं था तो उस जमाने में जहाँ सबको घर बार और मामलात होते थे वो मलंग सा एक आदमी था जिसका कोई घर बार नहीं था, आगे पीछे कोई नहीं था, तो वो आया सुबह सुबह तो उससे उन्होंने मुझे घुटी डलवा दी, तो मेरी माँ बाद में कहती हाय गड़बड़ गलती हो गई हमारे घर मलंग पैदा हो गया ये इतनी खतरनाक घुटी कहती है उसकी थी हमें नहीं पता था, तो जब भी मैं कोई सीधी सही बात करने लगूँ मेरी माँ कहती थी हमें पीर फकीर नहीं चाहिए सीधा सीधा काम करने वाला बंदा चाहिए, शादियाँ करो बच्चे करो पैसे कमाओ फलां करो इस किस्म की बातें, तो मैं कहता अच्छा ठीक है वही काम मेरे क्या आप कह रही हैं जिसकी वजह से आप इतनी दर्दमंद जिंदगी और हर वक्त अपने दुखड़े सुनाती रहती हमको।
2: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी, दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ, यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं नज़में सुनना चाहते हैं तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे, स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है एंड्रॉयड है ब्लैकबेरी है स्मार्टफोन्स हैं वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। دعا میں یاد رکھیے گا, زندگی رہی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Every act of charity is an investment for the hereafter. Whether it's a smile, a kind word, or a helping hand, give for the sake of Allah. Allah promises to multiply the reward of those who give sincerely. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
6: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. A Bedouin's saying.
8: A Bedouin once said that if authority is given to people who are not accepted, and weapons are given into the hands of those who do not use them, and wealth is in the hands of those who do not spend it, then surely the affairs of society will be at a loss.
9: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career, or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه تلق. That it is a good deed that you meet your brother with a smiling face.
11: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
12: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
0: Bachpan se sunte aaye hain, ye nahi kehna, wo nahi karna, sawal nahi poochna. Aur phir isi ravish se hamare zehni aur maashirti masail ulajhte chale gaye. Hamare masail hamare halaat se nahi, hamare khayalat se paida hote hain. Aur khayalat durust kiye ja sakte hain. Main hoon azad, aur agar aap bhi chahte hain ki hum sab azad ho sake apne hi paida kiye hue masail se, to baat kijiye. کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
13: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
0: ये सब हर कोई जो है ना कुछ अजीब चीज़ें बेच रहा है जो उनके पास है ही नहीं. जज्बात की बातें, कुछ दिनों में आप आसमान पे हैं, फिर एक दिन आप ज़मीन पे होंगे. लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे ही नहीं जब आपने उनकी मर्ज़ी पे चीज़ नहीं की. 10 मर्ज़ी पे करें, एक ना करें तो वो आंखें बदल जाएंगी. सो ये मुझे ये पंजाब में आकर ये सब पता चला. इसीलिए पंजाब मुसलसल मार खा रहा है और इसीलिए सदियों से जो पंजाब के हालात हैं वो नहीं बदले. दूसरी तरफ सरहद में आप जो कुछ कह रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहा कोई तो गवर्नमेंट्स भी बदल जाती हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं, हालात भी बदल जाते हैं, मामलात भी बदल जाते हैं. तो ये काफ़ी कल्चर का डिफरेंस आया. फिर मैं अमेरिका आया, फिर मैंने अमेरिका में कुछ मेरी लर्निंग हुई जो 4-5 साल मैंने, और मैं बड़े प्यार से मैं कहता हूँ, फिर मैं जब सिविल लाइफ में आया तो मैंने देखा तो यहाँ तो कोई सिविल ही नहीं है. तो फिर तो आर्मी में उसके मसाइल थे, सिविल में इनके मसाइल थे, तो दोनों को मिला के जो चीज़ें हमने की. फिर जो रिलीजन में हमें जो पढ़ाया गया जब मैं यहाँ पे आया, उस वक्त भी मैं डिफरेंट रिलीजन पढ़ता था. मेरे क्रिश्चियन, हिंदू, सिख वगैरह फ्रेंड हुआ करते थे जो कि लोगों को समझ नहीं आती थी. तब मेरे और मीडिया के भी फ्रेंड्स थे, कुछ और पॉलिटिशियंस भी फ्रेंड थे, बड़े बड़े लोग भी मेरे दोस्त थे, तो वो भी लोगों को समझ नहीं आती थी. और मुझे रिपोर्ट्स आती थी कि भाई आप इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं. मैं कह जी मैं कुछ नहीं चाह रहा, ये मलंगों के पास खुद आते हैं. तो हम तो ऐसे ही लाइफ देख रहा था, मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, तमाम रिलीजन के लोगों को मिल रहा था, कहना खाने हर किस्म के रेस्टोरेंट्स में जाके खा रहा था ताकि यू नो सब मुझे पता चले क्या है क्या नहीं है. हमने तो ज़िंदगी में कभी नहीं खाई थी हलीम. 21 ईयर तक हलीम मैंने लाहौर में आके खाई, निहारी मैंने कभी नहीं खाई थी. वो वहाँ पे हम तो सीधा सीधा पुलाव, बिरयानी, तो बिरयानी भी इस तरह सच नहीं होती थी, पुलाव होते थे, साग गोश्त, आलू गोश्त, इस किस्म के जो ना पाए, इस किस्म के खाने होते थे, ये खाकीना और ये सारी चीज़ें. तो आमी में आके फिर लाहौर में डिफरेंट किस्म के खाने हम समझे कि ना कुन्ना क्या होता है, और फिर उसके बाद हरीसा क्या होता है, ये सारी चीज़ें फिर हमने, फिर अमेरिकन फूड्स एंड इटालियन फूड्स एंड सारे, फिर हमने मैंने कहा अपनी तनख्वाह से हम ये सारी चीज़ें स्टेक्स इन्जॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि पता चले. तो बाकी मैनरिज्म वगैरह तो सारी आमी आपको सिखा देती है. तो ये करते करते करते फिर अब मैं कहीं बैठा होता हूँ लोगों के साथ, तो अच्छे खासे गोरे हमारे साथ बैठे होते हैं, उनको बेसिक मैनर्स नहीं आते खाना खाने के, कुर्सी पे किस तरफ से बैठना है, किस तरफ से उठना है, कौन सी चीज़ के साथ क्या खाना है. अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, उनको नहीं आता ये सब. मिलियनेयर्स हैं, कई बाद में बने हैं ना. सो ये सारी चीज़ें बेसिक मैनरिज़म्स और सब तमीज़, तहजीब, लेडीज़ के साथ, मर्दों के साथ, लोगों के साथ बिहेवियर करना, ये सब आपको आर्मी सिखाती है. और एक पूरा आपको एग्जेक्टिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ये चाम स्कूल के अंदर होते हैं अगर आप ध्यान दें तो, ये तमाम चीज़ों से. और रख रखाव होता है, छोटे बड़े की अदब, एहतराम, तमीज़ होती है, सीनियर का की एक से होती है, जूनियर का जिस कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसके हिसाब से उसको डील किया जाता है. तो वो एक ये सारी चीज़ें सीख कर, नहीं सीखी होती तो ये सब कुछ थोड़ी हो रहा होता जो आज हो रहा है. तो इसलिए मेरा एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट आर्मी और बहुत बड़ा पार्ट है लाहौर का. और मैं बड़ा उसको अभी भी जब जाता हूँ, मैं जब भी मेरी 10 दिन की छुट्टी होती थी, 5 दिन मैं लाहौर में रहता था, 5 दिन 3-4 दिन घर में, बाकी इधर उधर, बाकी वापस आके लाहौर में, क्योंकि दुनिया देख रहा था, मैं ज़िंदगी देख रहा था. मैंने वहीं से फिर अपनी MBA की डिग्री भी की व्हाइल आई वाज यू नो डूइंग माय थिंग्स. उसी में फिर मैंने मार्केटिंग में, एक फैशन मैगज़ीन था उसके अंदर मैंने सेल्स का भी कुछ ऐसा काम था, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, वो भी मैंने की. फिर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, उसमें फिर बाद में मैं साल एक में जो मिला मैंने उसमें भी काम किया. फिर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको मिलाकर फिर मैं वापडा में रहा, पुलिस में रहा, यू नो ये सारे काम मैंने देखे कि स्ट्रक्चर अपर लोअर मिडिल स्ट्रेटा काम कैसे करता है, रियलिटी में चीज़ें कैसे होती हैं, जो हम समझते हैं चीज़ें वैसे नहीं होती. पॉलिटिशन से मिला, बड़े बड़े जर्नलों से मिला जो कि यू नो पॉलिसी और मुल्क रन कर रहे थे, गवर्नर से मिला, यू नो इस तरह की चीज़ें हुई. उससे फिर मिल के मुझे समझ आई कि ये कहानी वो है ही नहीं जो हमें सुनाई बताई जाती है. आम आदमी बेचारे को कुछ नहीं पता, वो वैसे ही जज्बाती गला फाड़ते रहते हैं या उनको लगता है कि हमें पता है. तो मीडिया ने जो बताना होता है वो इतनी खबर बाहर जाती है जिसका कोई मकसद होता है और माइंड शेप अप किया जा रहा होता है लोगों का. और जो कुछ भी खबरों में होता है वो एक्चुअल में कोई खबर नहीं होती, खबर कुछ और होती है जिसको छुपाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है. फिर आप फिल्मों में आए, मूवीज़ देखी, चीज़ें देखी, ट्रैवल किया, उससे फिर बहुत बार सारी चीज़ें पता चली. फिर लिखना शुरू किया, फिर यू नो और लोगों से मीडिया में इंटरेक्ट किया, फिर हॉलीवुड में कुछ लोगों से मिले, बात की, काम किया कुछ अरसे के लिए. तो फिर उससे और बहुत सारी लर्निंग हुई. बहुत कुछ जानने के बाद फिर हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना है और कितना छोटा भी काफ़ी है और अपना अगर हो तो बहुत बेहतर है और लोगों के साथ कलेबरेशन करके कैसी चीज़ें की जा सकती हैं, इस पर काम किया. तो ये सब मिलकर एक एजुकेशन बनती है, और ये सब जब हो रहा था तो साथ इंसान, मर्द, औरतें, छोटे बड़े, बुज़ुर्ग, उनसे बहुत सारी विजडम जो है वो कशीद करनी पड़ती है, ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ता है, और वो 8-10 चीज़ें जब आप समझ जाते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ, जो उतना कुछ कम से कम ज़रूर पता चल जाता है कि आप बहुत अच्छी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं, जी सकते हैं, और रिश्तों पे और ख़ुद पे काम कर सकते हैं, और फिर आप अपना टाइम ऐसा मैनेज कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चाहने के बजाय चीज़ें थोड़ी थोड़ी हों, साफ़ हों, बेहतर हों, और एक बैलेंस के अंदर हों, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर सकते हैं और आगे किसी चीज़ को भी डिवेलप, कुछ भी करना चाहें आप आराम आराम से कर सकते हैं। ये थी पूरी ज़िंदगी एक बड़े से नटशेल में।
1: जबरदस्त, ज्यादा लग तो पूरी सैर करा दी हम।
0: देखें आप साथ साथ चल रही थी, किसी ने कभी पूछा ही नहीं, तो मैंने भी फिर नहीं बताया, इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में फिर बताना पड़ा ना।
1: लेकिन ज्यादा लग आपने इतना कुछ इसलिए सीखा कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत माशाल्लाह से अच्छी है, और कोई दूसरे बहुत से लोग होंगे उनका ये एक्सपोजर हुआ होगा लेकिन उन्होंने इतना नहीं सीखा होगा।
0: उसकी रीजन ये है कि मैंने जितनी भी चीजें सीखी है ना, वो इसलिए सीखी है कि ये तमाम चीजें मेरे पास नहीं थी। ऑब्जर्वेशन मेरी इसलिए बनी कि जब आप फिजिकली वीक होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, तो फिर आपकी तीसरी आंख खुल जाती है ऑब्जर्व करने की। वो ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं फिजिकली अगर वीक हूँ तो मुझे अपने आप को कैसे हैंडल करना है, और अगर मुझे मेंटली वीक हूँ तो मुझे कैसे हैंडल करना है अपने आप को। तो ऑब्जर्वेशन से आहिस्ता आहिस्ता किस जगह पर आपने जाना है, किसके पास नहीं जाना, किससे दूर रहना है, अगर आप फिजिकली वीक हैं तो आपका माइंड भी वीक होता है, तो कैसे चलना है। तो वो जो कमज़ोरियाँ थी मेरी, एज़मा भी चल रहा है, स्टैमरिंग भी चल रही है, वो जो इन्वायरमेंट था मैं उसमें भी you know, बहुत अनफिट सा था, तो उसकी वजह से मैंने अपने आप को, डर जो मेरे थे उसको दूर करने के लिए मैंने गौर करना शुरू कर दिया चीज़ों के ऊपर, क्या चीज़ मेरे लिए है, क्या चीज़ मेरे लिए नहीं है। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जब ऑब्जर्व करते जाते हैं आप, तो पता चल जाता है आपकी वीकनेस क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कैसे लोगों से दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी, किस जगह, किस एनवायरनमेंट के अंदर you know, आपने चेक कर लिया चीज़ों को, ये नहीं है, तो आप दूर तक देखने की एबिलिटी रख सकते हैं उस वक्त, क्योंकि आपको एक घबराहट की वजह से एक आप सोचने का तरीका एक ईजाद करते हो। बाकी लोग क्योंकि ताकतवर होते हैं, यानी चीज़ों को लगता है कि हैंडल कर लेते हैं, पावर थ्रू भी चीज़ों को कर लेते हैं, अपनी मनमानी कर लेते हैं, तो ये सब कुछ नहीं हो सकता था। हमारे घर में मैं एक हद तक ही जोर लगा सकता था, उसमें घर में एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के दो लोग थे जो सब रन कर रहे थे, तो उसमें मैं कब तक ये करता रहता। तो बिल्कुल इसी तरह फिर जब ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाती है तो फिर इमेजिनेशन भी बढ़ती जाती है, फिर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में आप अपने साथ सच बोलना शुरू कर लेते हैं। मुझे बचपन से लोग कहते थे आप इसमें बड़े अच्छे हैं, उसमें बड़े अच्छे हैं, जवानी में कहते थे आप ये हैं, आप वो हैं, आप फलां हैं, मुझे अंदर से पता था ये जो भी कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है, मुझे पता है कितना मैं हूँ, किस योगा में हूँ, और बाकी किस तरफ मुझे काम करना है, और मुझे किस, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था सब कहते थे आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो मुझे एग्जैक्ट पता था कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, एक हद तक मेरी एबिलिटी है, इससे आगे वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मुझ में नहीं है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है या टेक्निक नहीं है, या तो फिर मुझे वहाँ रोक कर किसी और तरफ सोचना था। मैं इस तरह नहीं कर सकता था मैं खेलता रहूं और अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर लूं इस सोच में कि मैं एक दिन पाकिस्तान टीम में चला जाऊंगा, आई वॉज़ नॉट दैट गुड, सिंपल। इस तरह बाकी मैंने कुछ और चीज़ें ट्राई की, आर्मी में गया, कुछ और चीज़ें मैंने देखी, सिविल में कुछ काम किए मैंने देखा, फिर एक दिन मैं चीज़ें करके छोड़ता चला गया और you know, चीज़ों को ट्राई करता गया। लोग जो कह रहे थे कि वक्त ज़ाया हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं था, लोग जो कह रहे थे कि आप इसमें अच्छे हैं उसमें बुरे हैं उनको कुछ पता नहीं था, you know, लोग जो है ना वो बहुत लगता है उन्हें पता है बट इतना उनको पता नहीं होता, वो लगता है कि वो समझते हैं लेकिन वो इतना समझते नहीं जितना आप समझते हैं, क्योंकि आप सिचुएशन के अंदर होते हैं और आप ऑनेस्टली सिचुएशन को देख रहे होते हैं और आप दीवाने का ख्वाब नहीं देख रहे होते, आप हाज़िर रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं और आप प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, फिर लोगों की बातों में आप नहीं आते। एक वक्त के बाद जब आप ये सारी चीज़ें सीधी कर लेते हैं, फिर जब आपसे लोग कहते हैं ना आप ये कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ चलिए ट्राई कर लेते हैं, तो फिर जब मुझे किसी ने कहा कि आप एक्टिंग कर सकते हैं मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, मुझे ये भी किसी ने पहली दफ़ा कहा था आप रेडियो बड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो मैं फिर डैलस में आया तो मैंने कोशिश की चलो रेडियो करने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा हो गया। इसी तरह मुझे किसी ने कहा था आप लिख बहुत अच्छा सकते हैं, ये आशा जी ने कहा था बाय द वे, स्टेज प्ले वाला हमने किसी से लिखवाया था, उल्टा सीधा था, उल्टी सी मैं ये चीज़ करवाना नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा था ऑनेस्टली आई थिंक यू कैन राइट सो मच बेटर देन दिस आज़ाद। और दिन थे नहीं मेरे पास, कुल 4 दिन रह गए थे, उस मजी लैंड कर चुकी थी सैन फ्रांसिस्को में, तो अब मुझे ही लिखना था, तो जब मैंने लिखा तो वो जिस तरह लिखा गया, जिस तरह फ्लो आया उसके अंदर मुझे भी मज़ा आया, तो फिर हमने दूसरा लिखा, फिर उसके बाद तीसरा चौथा लिखा, फिर यही तरीका था ऑब्जर्वेशंस को لوگوں تک پہنچانے کا, پھر جتنے بڑے پلیٹفارم پہ جا کے آپ نے یہ کام کرنا تھا, آپ ساتھ ساتھ پریپیئر کرتے جاتے ہیں اپنے آپ کو, اس پہ کام کرتے جاتے ہیں مینٹلی فزیکلی اور یو نو اس کرافٹ کے اوپر. پھر ایک دن آتا ہے جب آپ صحیح رائٹ ٹائم اینڈ اسپیس میں آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. تو وہ پھر جب ہم ریڈی ہوئے تو پہلے عظمیٰ گیلانی والا آیا, پھر نعمان اعجاز کا آیا, پھر ابھی ایک دو اور چیزوں کے لیے ہم تیاری پکڑ رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے. اب مائنڈ بن گیا ہمارا تو اب سب کچھ سامنے آ جائے گا خود بخود. تو دس از ہاؤ مینیفیسٹیشن ورکس. اور کیسے کیسے آپ یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں میری زندگی کی, جو ساری چیزیں جو میں شیئر کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ کو مینیفیسٹیشن نظر آ سکے. اس لیے کہ ایک عام سا آدمی عام سے طریقے سے عام سے یو نو چھوٹے سے ایک ٹیلنٹ کے ساتھ اگر یہ چیزیں کر سکتا ہے, تو زیادہ تر لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہیں, میرے سے زیادہ بہادر ہیں, میرے سے زیادہ جو ہے ان کا ٹیلنٹ ہے, وہ میرے سے زیادہ ان کے پاس گفٹ ہے, اور میرے سے زیادہ زندگی ہے ان کے اندر. جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, دے ہیو مور لائف دین آئی ہیو ان سائڈ آف می. اور ان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی بہت ایسی ہیں کہ جس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے زندگی میں. تو پھر میں یہ کر کے ان کو صرف دکھا دیتا ہوں کہ وہ جہاں تک جانا چاہیں, جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہو سکتا. میں سانس لے لوں؟
1: ہاں لے لیا.
0: کیا سیکھا آپ نے؟
1: بہت کچھ سیکھا آج میں نے.
0: آپ کو ہر دفعہ یہ لگتا ہے کہ اتنا سیکھ لیا اگلی دفعہ کیا سیکھوں گی, پھر آپ کو لگتا ہے نہیں آج سیکھا ہم نے.
1: نہیں زیادہ میں ابھی جو بات کر رہے تھے آپ, تو ماشاء اللہ آپ بہت آرٹسٹک ہیں, تو آرٹسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ایکچولی؟
0: پہلے تو آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو پہلے تھوڑا سا آرٹسٹک ہو, سمجھ رہے ہیں؟ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ پوئٹ ایٹ ہارٹ ہونا یا آرٹسٹک ہونا, کئی دفعہ جس انوائرمنٹ میں ہم ہیں نا, ہم اتنے بدقسمت انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں کہ آرٹسٹ سے شروع میں ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, اس کو نازک سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بندہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو کوئی بندہ ایف ایس سی میں اگر سائنس کے بجائے آرٹس لے لیتا, سارے اس کو پہلے سے ویک سمجھنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو میں اچھی بات یہ ہے جو کام میں نے کیا اپنی زندگی میں, شروع میں مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کہ میں یہ یو نو ایکٹنگ ڈائریکٹنگ رائٹنگ پومز اینڈ یہ سب کچھ کروں گا, نہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایک لائن بھی لکھی تھی. لیکن میں جس پروفیشن میں لکی یہ تھا کہ میں جس پروفیشن میں گیا نا, وہ پروفیشن آپ کو مینٹلی اور فزیکلی سائیکولوجیکلی اسٹرانگ بناتا ہے, آپ کو مینجمنٹ کا آدمی بناتا ہے, آپ چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں. آپ پہلے خود کو مینج کرتے ہیں فزیکلی, اتنی مشکل وقت میں سے آپ گزرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نہیں مریں گے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کی مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں, پھر آپ کو آہستہ آہستہ پاورز دی جاتی ہیں, اور پھر آپ کے لیے بہت سارے بندے ہیں جن کا آپ کو رسپانسبل بنایا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ سے لے کے ان کی لائف پوری آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ مینج کرنا سیکھ لیتے ہیں, آفس کو مینج کرنا, کسی آؤٹ فٹ کو مینج کرنا, کسی بندے کی لائف کو مینج کرنا, اور یہ سب آپ خود پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں خود پہ اپلائی کرنا, لیکن جب آپ خود پہ اپلائی کرتے ہیں تو ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ایک یونٹ کے یا کسی آؤٹ فٹ کے فائنینسز کو ہینڈل کرتے ہیں, آپ اپنے بھی ہینڈل کرنا سیکھ لیتے ہیں. اس میں 400-500 ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں, کسی کو پیار سے سمجھانا ہے, کسی کو غصے سے, کسی کو ڈنڈے سے, کسی کو سزا سے, کسی کو وربل وارننگ سے, کسی کو یو نو باقی چیزوں سے. اس کے بعد یہ سب طریقے بھی آپ سیکھتے ہیں اور اپنے آپ پہ اور اپنی فیملی پہ اپنے گھر پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے, لائف مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ویٹ مینجمنٹ, یہ سب مینجمنٹس ہیں. جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں مینج کرنا, تو اس کے بعد کوئی بھی چیز جب آپ کریٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ میں چیز کریٹ کرنے جا رہا ہوں یا میں کام کرنے جا رہا ہوں, اس میں فنڈز کہاں سے آئیں گے, میں سپورٹ خود کو کیسے کروں گا, اس وقت سچویشن کیا ہے میری. تو آپ مینج کرتے رہتے ہیں لائف کو ساتھ, ہر وقت آپ مینج کر رہے ہوتے ہیں, یہی کام ہے. سو جب آپ مینج کرنا سیکھ لیتے ہیں تو پھر کب آپ پوئمز لکھتے ہیں, پھر کس پلیٹفارم میں آپ نے یہ پوئم سنانی ہے یا کس چیز کا اس کو حصہ بنانا ہے, پلے اگر آپ کرتے ہیں, اب آپ کے پاس ایک پلیٹفارم ہے ریڈیو کا جس میں سوشل میڈیا بھی انوالو ہے, ڈیجیٹل میڈیا بھی انوالو ہے, شہر میں آپ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, ایک آپ نے ایک چیز بنا لی ہے, تو اس میں آپ اگر لوگوں کو موویز دکھانا شروع کریں تو وہ بھی چل جاتا ہے کام. اب آپ آرٹ ایگزیبیشن کریں کہ جس قسم کے ہمارے پاس لوگ ہیں وہ بھی چل جاتا ہے, کلوتھ ایگزیبیشن کریں وہ بھی چل جاتا ہے, اسی طرح آپ اسٹیج پلے لوگ جا کے یو نو براڈ وے پہ جاتے ہیں, اتنے مہنگے مہنگے $500 کے ٹکٹ لے رہے ہوتے ہیں, $50 میں بھی آپ براڈ وے کا ایک ٹائپ کا ایک شو دکھا سکتے ہیں جس میں سے بہت ساری چیزیں ہنسنا کھیلنا اور کوئی مقصد کی بات بھی ہو سکتی ہے, تو آپ اسٹیج پلے کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ یو نو پھر ٹائم ملتا ہے آپ کو, آپ ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایکٹنگ اصل والی دیکھیں کہ ہوتی کیا ہے, جملے پہ جملہ بٹھا دینا یا لائن ڈلیور کر لینا ایکٹنگ نہیں ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر میتھڈ ایکٹنگ ٹریننگ کے لیے LA گیا میں, وہاں سے پھر میں نے کچھ سیکھا, کیونکہ وہ اسکول آف آرٹ اینڈ تھیٹر ہے, تو اس میں پھر تھیٹر کیسے بنتا ہے, اس میں کیسے ایکٹنگ ہوتی ہے, تھیٹر کی ایکٹنگ, فلم کی ایکٹنگ, वेब सीरीज़ की एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग ये डिफरेंट होती है, इसे बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे न्यूआंसेस होते हैं तो आपको उनके साथ एडजस्ट करना होता है। ये करेंगे तो होगा, कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं करता, और कोई बंदा भी मुझसे या अपने आप से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं पहले दिन ही बहुत अच्छी नज़म लिख दूंगा, बहुत अच्छा प्ले लिख दूंगा या बहुत अच्छी एक्टिंग कर लूंगा। लेकिन अलॉन्ग द वे क्योंकि ये पर्सनैलिटी और चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं आपके अंदर, वो कैरेक्टर लिखा किसने, मैं नहीं लिखा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, एक्ट उसमें एक कौन कर रहा है वो भी मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऐड अप करती हैं कॉन्फिडेंस से, और जो भी घबराहट और नर्वसनेस होती है उसको हैंडल करती हैं, और आप एक काम कर जाते हैं और डिसेंट सा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो पहले से दूसरे से बेहतर होता चला जाएगा। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट एक्टर्स होते हैं जो एक ही काम करते हैं, वो यही काम 15 20 25 30 साल से कर रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स उनका काम ज़्यादा रिफाइंड होता है। अगर आप उनके साथ एक जगह हैंडल ही कर लें उस फ्रेम को, स्पेस को, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमने हाला में किया, वहाँ पे सबसे जूनियर मैं था जो पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा था, बाकी 15 20 सालों से ये काम कर रहे थे लोग, सो उनकी बहुत सारी फिल्म्स कर चुके थे वो, तो उनके साथ भी काम किया, ठीक ही था, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि बहुत बेहतर किया जा सकता था उसमें, कुछ चीज़ों को वरी करने के बजाय अगर मैं और ज़्यादा अच्छी टेक्निक से करता तो और भी अच्छा हो जाता। तो इस तरह ये चीज़ें खुल कर आहिस्ता आहिस्ता करने और खेलने से ये चीज़ें पैदा होती हैं। कुछ लोग लकी होते हैं, शुरू में ही जिस काम के लिए वो पैदा होते हैं उनके हाथ लग जाते हैं, कुछ लोगों को लोग बता देते हैं आप इसमें बड़े अच्छे हैं, उसमें वो काम करते हैं और उसमें वो एक्सेल कर जाते हैं, कुछ लोग अलॉन्ग द वे सिचुएशन एक ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक चीज़ का पता लग जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ये रेडियो का शो, मुझे तो कभी लगता भी नहीं था मैं शाय आदमी हूँ, मेरी नेचर बड़ी डिफरेंट किस्म की है, प्राइवेट भी बहुत हूँ, तो मैं ये काम कैसे करूँगा, लेकिन करते करते ये भी इतने सालों तक हो ही गया, अभी भी मैं रोज़ इस पर काम करता रहता हूँ बेहतर करने के लिए इसको। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। फिर फिनेस इंसान के अंदर होना, आप खाना बनाते हैं कैसे पेश करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं कैसे करते हैं, लोगों के साथ चीज़ों का बैलेंस में, अगर आर्टिस्ट एक बंदा, बेसिकली आर्टिस्ट का काम पता है क्या है, आर्ट क्रिएट करने वाला एक ही है जिसने ये यूनिवर्स बनाई, जिसने ये दुनिया बनाई, वो आपको एक ब्रेन वेव देता है, आप उस ब्रेन वेव के अंडर इन्फ्लुएंस के अंडर एक चीज़ बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो कोई लिखने की चीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कॉम्पोजिशन है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उस मोमेंट में आप उस चीज़ को पकड़ते हैं और उसमें आपकी इतनी ज़्यादा से होती नहीं है, आप उसमें से खुद बाहर निकल जाएं और वो चीज़ जैसे है उसको वैसे पेश करने की कोशिश करें, और उसको नोक पलक संवारने में, जैसे यू नो एक स्कल्प्टर होता है ना, स्कल्प्टर जो होता है वो स्कल्प्चर बनाते हुए भी, वो किसी ने जब कहा था ना, जो मुजस्मा होता है ना वो पहले से पत्थर के अंदर होता है, आर्टिस्ट का क्या काम होता है, वो सिर्फ उसकी जो साइड की फालतू की जो पत्थर है वो हटा देता है और उसके बीच में से वो निकल आता है। तो बिल्कुल इसी तरह आर्टिस्ट का भी एक्चुअल में ये काम होता है कि उसको एक चीज़ है, उसकी ब्रेन वायर्ड होता है एक सर्टन तरीके से, अब उसने उस ब्रेन वेव को पकड़ के उसको कैसे करना है। कुछ लोग बहुत लेज़ी होते हैं इसके साथ, कुछ लोग इसको बहुत एक गिफ्ट को गिफ्ट की तरह संभाल के रखते हैं आखिर तक, तो वो बहुत लंबे अरसे तक कोई चीज़ आपको दे सकते हैं। सो ये चीज़ होती है, कभी ये आपको हिट कर जाती है, कभी आप इसको हिट कर जाते हैं, और कभी एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक काम करते हैं और वो काम निखर जाता है और उसमें आपको मज़ा आने लग जाता है, उसमें रेसिप्रोसिटी जो है, लोगों को जो चीज़ उसके एक्नॉलेजमेंट मिलती है उससे आपको डोपामिन इफेक्ट मिलता है और फिर आप चीज़ों को क्रिएट करने लगते हैं। तो ये एक पूरा सफ़र हो सकता है किसी भी आर्टिस्ट का। कैसा था ये वाला आखिरी पॉइंट?
1: बहुत ज़बरदस्त था।
0: कोई पॉइंट मिस हुआ आज?
1: नहीं।
0: ठीक है, ये नाइक्विल हल्की सी रात को लेके अगर ये आदमी कर सकता है तो इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है।
1: आपने नाइक्विल ली और ये हाल है
0: रात को रात को छींके शुरू होगी, तबीयत ऊपर नीचे होगी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ी सी ले ले ताकि सो भी जाए, और सुबह का काम अब मैंने नहीं छोड़ना क्योंकि मैंने वादा किया मंडे वेंसडे, तो अगर मैं मंडे वेंसडे को भी नहीं कर सकता, मैंने फ्राइडे ऑफ भी लिया हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चार दिन मैंने ऑफ लिए, तीन दिन मैं शो के बारे में और रेडियो के बाकी काम करता रहता हूँ, तो फिर मैंने कहा कम अज़ कम इतना तो कर, इतना करूंगा तो बाकी का काम भी होगा, और बाकी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। ये जो मैंने बाकी दिन ऑफ लिए उसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो जो मैं कर पा रहा हूँ ना, स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहा हूँ, प्लेस के ऊपर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊंगा, आपका दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाएगा
1: इंशाल्लाह ताला, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
0: ठीक है, और आप इतने दिनों के बाद आए, उम्मीद करता हूँ और आपने इतना साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोगों के गोश गुजार किए आपने, ठीक है, उनके कानों में से गुजारे, इस तरह उनके कान साफ रहेंगे, और मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं होगी, वो एक दफ़ा उन्होंने जिसको हम जाने लगे आर्मी में तो उन्होंने कहा जी आपके कान साफ करने लगेंगे, फिर कानों में जैसे सैलाब आ जाता था पानी का, आपको ने कभी कराया है वो?
1: हाँ जी अजहर, पहले तो उसी तरह पानी डाल के साफ
0: दे वो डैमेज है, ये तो उसके पानी के अंदर केमिकल चीजें होती हैं और इस तरह प्रेशर दे दे के कान का पर्दा फट सकता था, वो बेवकूफी थी करना। आजकल के जमाने में कोई सेंसिबल आदमी वो काम नहीं करता।
1: नहीं नहीं वो पहले जमाने में होता था।
0: और एक और जाहिलों ने काम किया, मेरे दांतों में शायद कहीं कैविटी थी मोलर्स में, उन्होंने उसमें मर्करी डाल दिया। अब जितनी भी मैं नई साइंस पढ़ रहा हूँ वो सब के सब कह रहे हैं कि आपने वो मर्करी निकालना है, और जो मर्करी निकालना है वो मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो मैंने कहा ये कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा आप नई नई चीज़ें आ गई हैं जो बड़े हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक पीछे क्योंकि उसके फ्यूम्स होते हैं, मर्करी तो मतलब कातिल चीज़ है, पता नहीं क्यों ये मर्करी डाल रहे थे उस जमाने में, लोहे से किसी तरह से काम चला लेते या कुछ और कर लेते। तो अब जो है वो उसको मैं अब जब भी सोचता हूँ कि इसको निकलवाऊँ मर्करी को और उसकी जगह कोई नए ज़माने की अच्छी चीज़ डलवाऊँ, तो उसमें वो कहते हैं कि जी इसके फ्यूम्स के लिए फिर आपको पीछे एक ना एक सॉकेट सी गले में रखनी होती है ताकि वो फ्यूम्स पीछे की तरफ ना जाएं आगे। अब इस बात से मैंने कहा मराने के चक्कर में, ये पहले भी हमने इतने डरे हुए हैं कि दांत साफ कराते कराते बंदे की जान भी जा सकती है। वसीम अकरम की वाइफ याद है ना आपको?
1: हाँ जी,
0: वो डेंटल से ही उनको हुआ था।
1: नहीं अजादला, ये सब अजीब की चीज है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त।
0: गए आप दांत साफ कराने, लेके आप ब्रेन का इन्फेक्शन आ गए। लोग क्या कहेंगे, हमें तो पहले से पता था एक नॉर्मल ब्रेन का आदमी ये काम तो नहीं कर सकता जो बोल के लबाजा। तो मैं जाते हुए लोग अपनी आंखें कान नाक दे रहे हैं, मेरे किसी काम के तो है नहीं, मैं ब्रेन दे जाऊंगा कि इसको खोलो चेक करो कहाँ पे चोट लगी थी बचपन में। ये जो मैं दरिया में गिरा था घोड़े से और पुल के नीचे से आया था तो वहां तो सट नहीं लगी मेरे सर में ये।
1: अल्लाह ज़्यादा, वो एक अलग वाक्य जो आपने सुनाया था, जो आप गिर गए थे।
0: आई वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, हां जी, 1 साल का था मैं। घोड़ी पे मैं शेर खान के साथ जा रहा
1: था। अजीब चीजें हुई हैं
0: पता नहीं, और जो भी हुआ उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया था, मेरी माँ कहती है, तो उसके बाद ना कोई चीज मेरी फिर एलर्जीज नॉर्मल नहीं रही, मुझे हर चीज फिर उसके बाद ही शुरू हुई थी। बट बच गए उस पानी में, सवाल ही नहीं पैदा होता था एक तरफ, दूसरी तरफ वो पत्थरों का पुल था, उसके नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर हो सकते थे बच्चे का जो सर, और जो भी मुझे चोट लगी है उसके बाद से शो निकला है। शुक्र है,
1: शुक्र
0: है, कुछ चोटें जैसे कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं, इसी तरह कुछ चोटें भी अच्छी होती हैं लगता है। अगर प्यार से मारी जाएं और रब की तरफ से ना, वो एक लात जो कुब्बे को रास आ गई और उसका हंच जो था ना, वो हंच बैक जो था ना वो सिद्धा हो गया। और बेसिकली ब्लेसिंग्स आप लोग हैं, और आपने अभी जो इतना अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज एक स्ट्रेसफुल डे को डी स्ट्रेस करने में अपना तीन मेहरबान लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। आज कॉल्स वैसे कम थी लेकिन मेरा ख्याल है लोग जब आप और हम बात कर रहे होते हैं, और शहनाज जी और हीरा सिंह जी तो फेवरेट लोग हैं लोगों के, तो इनकी डिस्कशन से जो शगुफे फूटते हैं, जो क्लिप्स बनते हैं और जो शो जिस किस्म का बनता है लोगों को बड़ा पसंद आता है। पिछले तीनों शोज जो हैं ये अभी तक बहुत अच्छे रहे, मैं ग्रेटफुल हूँ, और आपको रब जो है वो सेहत और भी अच्छी और बेहतर अता करें ताकि आप सारे स्वेटर के बटन खुद बंद कर सकें, ठीक है जी, और खुश रह सकें। इसी तरह खनखनाती हुई हंसी जब आप नहीं थी तो हमने आपका यू आर लिसनिंग टू रेडियो आज़ाद, हेलो हेलो माय डार्लिंग्स, वो सब जो था वो हमने लोगों के गोश गुजार किया और रूहानी तौर पे आपको प्रेजेंट रखा ताकि आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो हमारे साथ शो में रह सके। खुश रहें, ग्रेटफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इजाज़त चाहते हैं आपसे, वक्त हुआ चाहता है जी कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए खबरनामा, खबरनामे के बाद आपका शो, और आज का जो पोम और आपका ट्रैक जो है हम पे उधार रहा अगले शो में, अगला शो इससे बहुत बेहतर होने वाला है। उस शो से पहले हमने कुछ, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट के बारे में हमने आपसे कुछ बातें करनी है, वो भी हम दिसने शो में आपसे करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स हमने आपको देने अगले शो के, और बहुत मज़ेदार टॉपिक्स जो पहले कभी किसी रेडियो पर नहीं हुए होंगे, कभी बोल के लब आज़ाद है तेरे में, ऐसे एक दो टॉपिक हैं जिससे जो रिलेटेड है ऑडियंस से, वो करेंगे हम आपके साथ, कुछ फन क्रिएट करेंगे इन दिनों में, फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स, और फिर हमने शो से क्या सीखा, और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे अपने सीजन 18। ये सीजन 17 आज तक का सबसे लंबा सीजन था, और ये तमाम आप लोगों की मेहरबानियों से हम यहां तक पहुंचे। जो भी टूटा फूटा हमने काम किया और आप लोगों ने उसको सलाम किया, उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वो बात तो याद होगी जिसकी वजह से ये शो बना, फैला, फला फूला और यहां तक पहुंचा। ये करेंगे, सब कुछ हो सकता है अगर ये वो की है। लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और ये याद रखिएगा, ये जो चीज़ हमने एक आपके लिए बनाई है।
14: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन आल्सो लिसन टू आवर
2: ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazart.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں، نظمیں سننا چاہتے ہیں، تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں، مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر، آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے، اینڈرائڈ ہے، بلیک بیری ہے، اسمارٹ فونز ہیں، وہ لوگ ہمیں ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا زندگی لی تو پھر ملیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

0: when the dunya was the punishment for Adam alayhim as-salam. A quote from Imam Hassan al-Basri.
1: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
2: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
3: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
5: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
6: This is the national and international news today, Thursday, 23rd of July for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Houthis claim attack on oil tankers as US launches more strikes on Iran. US signs landmark nuclear deal with Saudi Arabia. Burnham cuts rates for pubs, clubs and music venues in England by 20%, but Badenoch asks, is that it? Woman and teenage girl dies at Essex Beach with four others taken to hospital. Airport drop-off fees up by a third. Scotland set to welcome the world for scaled back Commonwealth Games. Life-changing MS drug to help people walk on NHS in England. Now the details. Yemen's Houthis said they have attacked two Saudi oil tankers in the Red Sea as the US launched its 12th consecutive night of strikes on Iran. Iranian state media said two people had been killed in the US strikes on Wednesday and a tanker caught fire in an explosion in a mined route in the Strait of Hormuz. Ahead of the latest round of strikes, Donald Trump had threatened to destroy an Iranian bridge or power plant if Iran attacked a ship in the Strait of and to take care of the Houthis if they blocked the Red Sea. If confirmed, the Houthi attack would be the first since the Iran-backed group announced a maritime embargo against Saudi Arabia. The US and Saudi Arabia have signed a landmark deal that will allow the Gulf Kingdom to develop a civilian nuclear program. The deal is described as a peaceful nuclear cooperation agreement that will provide great access for American companies in the Saudi nuclear energy program by the U.S. Energy Department. Text from the deal has not been made public, but U.S. media report that it could allow Saudi Arabia to enrich uranium in the future, which can be used as fuel for power plants, but also to make nuclear bombs. Experts say that would mark a first for the U.S. and would run the risk of nuclear proliferation in an already unstable region. Andy Burnham says pubs, clubs and live music venues in England will get a 20% cut in business rates from April, but cafes and restaurants won't benefit. Number 10 says a typical pub could save about £1,100 a year. Chef and pub owner Tom Kerridge tells the BBC, £1,000 on a yearly revenue doesn't really make a difference. Meanwhile, Conservative leader Kemi Badenoch asks, is that it? The policy will cost around £100 million and will, the government says, be funded by a review of tax reliefs given to businesses such as vape shops. A teenage girl and a woman in her 40s have died after getting into difficulty at an Essex beach. The third person is in hospital in a serious condition, Essex Police says. Officers believe the group knew each other. Another three people were taken to hospital, the ambulance services say. The Coast Guard was called at about 5:35 on Wednesday. One witness says she saw three people appearing to get CPR on the beach. The drop-off fees at the UK's major airports have risen by a third on average since last summer, new analysis has found. The RSE Motoring Group looked at the cost of pulling up to the closest point to terminals at the 20 busiest airports, 16 of which had put up their prices since last year. London Airport Gatwick topped the list for charging a farewell fee of £10 for 10 minutes, after lifting it by £3 from last year. Stansted also charges £10, but drivers are allowed 15 minutes, as is express set down outside departures. Who won the fastest man on the planet, won Commonwealth Relay Gold for Jamaica in 2014. More than 50,000 fans cheered him home at Hampton. But athletes seeking to emulate Usain Bolt when the Games return to Glasgow, including mile world record holder Josh Kerr, will be competing at Scotstoun Stadium in front of 11,000 spectators. This time round, almost everything is on a smaller scale, but organisers are confident fans will create a tartan army-style atmosphere for the 3,000 competitors who will be chasing glory. From Friday until 2nd of August, 215 gold medals will be up for grabs compared to 261 when Scotland last staged the Games. But Glasgow 2026 will see a record 47 para sports events. The first drug to help people with multiple sclerosis walk is being made available on the NHS in England. Famotidine boosts nerve signals to make it easier for some people to move and live independently. Up to 5,000 people in England could benefit each year. The drug is already available elsewhere in the UK. Multiple sclerosis is caused by immune system attacking the protective covering around nerve cells known as myelin. This damage impairs the ability of nerves to carry electrical messages from the brain to the rest of the body, including those needed for the precise controls of muscles needed to walk. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
7: इंस्पायर एफएम की उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकर्रम अब्बास। सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने तमाम नाबालग शहरियों के लिए डिजिटल शनाख्ती मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी प्रेसिडेंट रवा हफ्ते दर्जनों मुल्कों पर नई दरामदी टैरिफ आयद करने की तैयारी कर रहे हैं। यूएई ने सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ई पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया और अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी, दर्जनों जान बहक, सैकड़ों जख्मी। और अब इन खबरों की तफसील। बरतानिया के नौ मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम ने तमाम नाबालिग शहरियों के लिए डिजिटल शनाख्ती मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान किया है। इस मंसूबे पर खर्च होने वाली रकम अब महंगाई, अखराजात ज़िंदगी में कमी और अवामी फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। ये मंसूबा साबिक प्राइम मिनिस्टर सर केर स्टार्मर के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था, ताहम अवाम की जानब से शदीद मुखालिफत के बाद इसे सिर्फ रजाकाराना तौर पर अपनाया गया। दूसरी जनब एंडी बर्नम शुमाली समंदर में तेल और गैस की मौजूदा ड्रिलिंग मनसूबों को आगे बढ़ाने का भी इरादा रखते हैं। चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया है। नायब प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें बाहम दिलचस्पी के अमूर के अलावा खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। दोनों मुल्कों का मौकफ है कि कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती राब्तों की बहाली नागजीर है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के प्रोवियन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक दहशत गर्दों के ठिकानों से गोला बारूद और असलाह भी बरामद हुआ, जबकि मजीद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रवां हफ्ते दर्जनों मुल्कों पर नए दरामदी टैरिफ आयद करने की तैयारी कर रहे हैं। आरजी 10% आलमी टैरिफ की मुदत ख़त्म होने के बाद नई ड्यूटियाँ नाफिज की जा सकती हैं। गुज़श्त रोज़ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कनाडा की गाड़ियों और दिगर सामान पर 50% टैक्स आयद किया है, जो आइंदा माह से नाफिज होगा। अफगानिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में 25 अफराद जां बहक, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। सैलाबी रेलों में बहने से 100 अफराद लापता हैं। दूसरी जगह चीन में सैलाबी रेलों की तबाही से दर्जनों अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी हालिया दिनों मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से 20 अफराद जां बहक, जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने 20 जुलाई से सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ई पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। सफारती मिशन के मुताबिक अबू ज़हबी और दुबई में पासपोर्ट एप्लीकेशन सिर्फ ई पासपोर्ट कैटेगरी में ही कबूल की जाएंगी। मौजूदा मशीन रीडेबल पासपोर्ट अपनी मुद्दत मियाद तक ही मौसर रहेंगे, जबकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन की सहूलत बरकरार रहेगी। सामीन, ये थी इस वक्त तक की अपडेट्स। मजीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM।
5: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
8: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.
9: Sometimes a man wants to live his life very Islamic. Very Islamic, according to the Quran and Sunnah. And his first opponents, his wife and children. Sometimes a woman wants to live her life very Islamic. And want to do things the way the Quran and Sunnah tells us. And her husband and children are the first people who oppose her. So if your own spouse and your blood ties, children, are sometimes the first who criticize you and condemn you when you want to do things the Quranic and Sunnah way, then what about the rest of the world, the public? So you see where that hadith is a reality. When you do things for the pleasure of Allah, then people go against you, people won't like you. And when you do things for the pleasure of people,

0: From the heart of Bedfordshire in Luton, you are listening to Inspire FM on 105.1 FM.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Inspire 105.1 FM.
3: With new features and walks down memory lane, join Khalil Muhammad on the Drive Time Show.
4: A friendly voice to keep you company. Khalil Muhammad on the Drive Time Show here on Inspire 105.1 FM.
5: Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful guys and gals out there as well. Hope you're enjoying the show. Let's not hang about. Let's get right back into it.
6: Hi, Aslam Lagan. It's Scarlett. Be happy and keep listening to 105.1 FM.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 3:30।
2: Don't you worry, baby Bilal, I'm coming, don't you worry, I'm coming, I'm coming!

0: अब हम आ गए हैं एक अगले सेक्शन पर जिसका नाम है इल्तिफात। पहले मैं इल्तिफात का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर उसकी कुछ मिसालें कुरान में देखेंगे। आप में से जिनको दिलचस्पी है, इंग्लिश में इस पर एक बहुत बेहतरीन पेपर है जो प्रोफेसर अब्दुल हलीम ने लिखा है, इल्तिफात इन द कुरान, प्रोफेसर अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम अरब अब्दुल के स्पेलिंग मुख्तलिफ करते हैं, ABDEL अब्दुल हलीम। अब्दुल हलीम साहब जो हैं वो अजहर से तफसीरुल कुरान में उन्होंने अपनी PhD की, उसके बाद वो ऑक्सफर्ड मूव हुए, वहाँ पर वो कुरान यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कुरान स्टडीज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं। मेरे जो कॉलीग हैं डॉक्टर सोहेब सईद, जो अजहर से ख़ुद भी पढ़े हुए हैं और फिर उन्होंने भी अपनी PhD यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की है, उन्होंने प्रोफेसर अब्दुल हलीम के तहत की है, तो उनकी तहकीक से भी हम बहुत फ़ायदा उठाते हैं। वो हमारे एडवाइज़र भी रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, काफ़ी उम्र के हो गए हैं अब। उनके बारे में एक बात आपको मज़े की बताता हूँ, उस बंदे की उम्र अब तकरीबन 90-92 साल तो होगी कम अज़ कम। उनके घर में गया, मैं लंदन में था, मैं उनके घर गया, कुछ आयत के बारे में उनसे पूछना था, उनसे बात की, तो उनको सांस आने में मुश्किल होती है तो वो मशीन लगा के वो कभी कभी सांस लेते, तो बैठा उनके लिविंग रूम में, पहली दफ़ा मैं गया था तो बात की, तो बातों बातों में मुझे वो कहते हैं, वो उन्होंने अजहर से ग्रेजुएशन की थी 1955 में शायद या 1957 इस तरह को, उस वक्त से कुरान पढ़ते पढ़ा रहे हैं। और मेरे नज़दीक अंग्रेज़ी में तर्जुमे में हमेशा कोई ना कोई खलल होता है, लेकिन बेहतरीन तर्जुमे में से उनका तर्जुमा है कुरान का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का। खैर, उनके घर में बैठा हुआ था, कुछ बात हो रही थी कुरान के बारे में, अपना वो रेस्पिरेशन उठा के कहते हैं, नौमान, उर्दू में बताता हूँ आपको, अब मुझे आके कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुरान। मैं वहां बैठा सोफे पे पिघलना शुरू हो गया, इंसान इसने 80 साल अपनी जिंदगी के कुरान पढ़ने में लगा दिया, अब कह रहे हैं अब मुझे थोड़ा थोड़ा कुरान समझ में आना शुरू हो गया है। सुभानअल्लाह, ये कुरान का एजाज है, जितना इंसान उसको पढ़ता है ना उतना उसको एहसास होता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और जितना नहीं पढ़ता बड़ा एतमाद होता है, जी मुझे पता है कुरान में क्या है। बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं, जी हाँ मुझे पता है, पहाड़ों के बारे में बात है और कुछ पिछली कौमों के बारे में कुछ बातें, कुछ कहानियां हैं, पता है मुझे। जिसको जितना कम इल्म होता है उतना उसको एतमाद होता है, ये तो मुझे समझ आ गई, ये क्या बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है पता है बहुत सुन लिया। और जो पढ़ने पे आता है ना, फिर उसको अपनी कम इल्मी का ऐसा अंदाज़ा होता है ना कि मैंने तो बस कतरे पकड़े हैं, मैंने कतरे, कुछ भी नहीं आया मेरे हाथ। तो खैर, इल्तिफात बुक नहीं, आर्टिकल है इनका, इल्तिफात इन द कुरान, इल्तिफात ILTIFAAT, इल्तिफात। अच्छा, मैं इल्तिफात का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। इन्होंने वैसे बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, कुरान की डिक्शनरी भी लिखी है इन्होंने। खैर, मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूं, मैं आपका लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको कहेंगे मुखातब, मुखातब का सीगा, तुम, आप, तू, ये सब मुखातब के सीगे। अगर मैं कहूं वो लोग, या वो इधर आए कि नहीं आए, या मैं कहूं मेरी अम्मी ये कह रही थी, ये कौन सा सीगा है? ये गायब का सीगा है। एक है गायब का सीगा, अंग्रेजी में उसको थर्ड पर्सन कहते हैं, एक है जब आप किसी से मुखातिब हैं, वो मुखातब का सीगा है, और एक है मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो क्या है? मुतकल्लिम का सीगा है। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, एक है मैं और हम, एक है तुम, तू और तुम और आप, और एक है वो, है ना? सो मुतकल्लिम, मुखातब और गायब। इसी तरह एक है माजी, एक है हाल, एक है मुस्तकबिल, एक है वाहिद, एक है जमा। कुरान क्या करता है, कभी कभी बात कर रहा होगा वाहिद में, मेरा रब कभी बात कर रहा होगा वाहिद में, फौरन गायब की बात, बगैर किसी कॉमे के, बगैर किसी अगले पैराग्राफ के, एक ही आयत के अंदर वाहिद में बात हो रही थी, अब जमा में बात शुरू हो गई, माजी में बात हो रही थी, अब हाल में बात शुरू हो गई, मुतकल्लिम से बात हो रही थी, मुखातब से बात शुरू हो गई, एकदम से जो स्विच होता है ना इधर से उधर फौरन। आजकल फिल्म में मल्टीपल कैमरा एंगल्स होते हैं ना, आप तो फिल्में देखते नहीं, आप इस्लामी लोग, आपको नहीं पता, लेकिन मैं औरों की बात कर रहा हूँ। आप देखते थे जहालत के दौर की बात है, हाँ, फिल्मों के अंदर एक पे कैमरा, फिर एकदम से दूसरे पे कैमरा, फिर एकदम से वहां क्या हो रहा है, फिर वापस इधर कैमरा, फिर वापस उधर कैमरा, फिर वहां मीन वाइल बैक एट द रैंच, यू नो, फिर पहाड़ी पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ घर पे क्या हो रहा है, सीन बदलते रहते हैं ना। तो ये जो फिल्म टेक्नोलॉजी है, इसमें सीन बदलते हैं ऐसे ऐसे, बीच में वक्फा नहीं आता। अब अगला सीन पुलिस स्टेशन के अंदर होगा, उसके लिए अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लें। ऐसा नहीं होता, आपको बताए बगैर वो पुलिस स्टेशन में कैमरा पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद दोबारा लिविंग रूम में पहुंच जाता है, उसके बाद किचन में पहुंच जाता है, उसके बाद बाहर मैदान में पहुंच जाता है, ऐसा ही होता है ना। और कभी कभी क्या होता है, कहता है हाँ मुझे याद है आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, और फिर कैमरा आपको माजी में ले जाता है, वो माजी की कहानी शुरू हो जाती है एकदम से। ऐसा भी होता है कि नहीं? कुरान ने ये सारी चीजें जो आप फिल्म टेक्निक में देखते हो ना, ये सारे असालीब और इनसे ज्यादा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, और इनको कहा जाता है इल्तिफात। इल्तिफात, और इल्तिफात पे बहुत दिक्कत, बहुत बारीक नजर रखनी चाहिए जब कोई कुरान पढ़े तो इल्तिफात पे नजर रखे। कुरान के बहुत सारे असालीब हैं, बहुत सारे उसके स्टाइल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, उसकी एक खूबसूरत खजाने जो है ना वो उसके इल्तिफात के अंदर है। तो उसके बारे में आप कुछ, उसकी कुछ मिसालें देखते हैं। भी कुछ हफ्ते पहले मैं सूरत तूर का मुताला कर ही रहा था, पढ़ा रहा था दर्स सूरत तूर का, जन्नत के बारे में बात हो रही है। फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, खुशी खुशी होंगे उसके उस पर जो उनके रब ने उनको दिया होगा, खुश होंगे वो। ये मुतकल्लिम है, ये मुखातिब है, या ये गायब है? खुश होंगे वो जो उनको उनके रब ने दिया होगा। ووقاهم ربهم عذاب الجحيم, और उनको उनके रब ने जहीम के अजाब से, जहीम कहते हैं ऐसा शेर जिसकी आंखें खुल रही हों शिकार को देख के, आग जब भड़क रही हो अपने शिकार को देख के उस वक्त उसको जहीम कहा जाता है, जहीम के अजाब से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया होगा। ये कब की, किसकी बात हो रही है, हाजिर, मुझे मुतकल्लिम, मुखातब, या गायब? गायब। अगली आयत पढ़ते हैं, कुलू वश्रबू, खाओ और पियो, हनीगन, बेफिक्र होके, खुशी खुशी, बिमा कुंतुम तअमलून, उसकी बुनियाद पर जो तुम करते रहे हो, तुम करते रहे हो। ये कौन सा सीगा है? मुखातब का सीगा है। अगर बात उन्हीं की हो रही होती, पीछे वालों की, जिस तरह पहले हो रही थी, तो यहां होता लियाकुलू याकुलूना वयश्रबूना हनीअन बिमा कानू यअमलून, यहां कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून। अजीब कलाम है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो बात हो रही है अभी पहली आयत में कि वो बड़े खुश होंगे उस पे जो उनके रब ने उनको दिया होगा, ये अभी की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है? सबको जाहिर है ना मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो दो बातें नोट करनी है उसके बारे में, वो किसी और की बात हो रही है और मुस्तकबिल की बात हो रही है। गायब किसी और के बारे में होती है ना, किसी और की बात हो रही है और मुस्तकबिल की बात हो रही है। अगली आयत में जब मैं कहूं खाओ पियो, दो चीजें बदल गई। एक तो मुझसे बात हो रही है, क्योंकि मुखातब कौन है अब? मैं हूं ना मुखातब। जब मैं कहूं तुम खाओ तुम पियो, मुखातब कौन हुआ? मैं। तो एक चीज जो बदली वो उनसे बात हो रही थी, अब एकदम से किससे? मुझसे बात होनी शुरू हो गई। और दूसरा क्या बदला? जब किसी से कहो खाओ पियो, तो क्या मुस्तकबिल में कह रहे होते या हाल में? हाल में। पहली आयत में और मुस्तकबिल, दो तरह की दूरियां। जो और है वो दूर है, और मुस्तकबिल भी क्या है? दूर है। और मुखातब करीब होता है और हाल करीब होता है। मुस्तकबिल तो दूर है, हाल करीब है। अल्लाह ताला ने इस इल्तिफात के जरिए क्या किया, हर अहले ईमान जो आयात पढ़े उसके जहन में एकदम से एक सफर हो, यहां से हिजरत करके मुस्तकबिल की बात हो रही थी जो कितने हजारों साल बाद होगा, जितने करोड़ों साल बाद होगा, और एक लम्हे में मुझे वो उस लम्हे के अंदर ले गया اور مجھے اب یہ خیال اپنے ذہن میں آیا کہ میرا رب مجھ سے خود مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کھاؤ پیو. کس بنیاد پہ؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو. یعنی اب میں اپنے آپ کو مستقبل میں پا رہا ہوں. میں خود ابھی ذہنی طور پہ اللہ مجھے جنت کے اندر لے گیا, اور جنت میں لے ہی نہیں گیا, مجھ سے مخاطب بھی ہے اور مجھ سے میرا رب کہہ رہا ہے کھاؤ پیو. اور یہی نہیں کہہ رہا کھاؤ پیو, کہہ رہا ہے کیوں کھاؤ پیو؟ کیونکہ تم کس وجہ سے؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. لیکن کیونکہ میرا ذہن ایک دم مجھے مستقبل میں لے گیا, اور مستقبل میں میرا رب عجیب ماضی کی بات کر رہا ہے, مستقبل میں جا کے میرا رب مجھ سے ماضی کی بات کر رہا ہے, لیکن اصل میں وہ بات کب کی ہے؟ ابھی کی ہے. جیسے ہی میں اس آیت کے سفر سے نکلا تو مجھے اندازہ ہوا مجھے عمل کب کرنا ہے, ابھی کرنا ہے. یا اللہ کیسا وقت کا سفر. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اور اس میں سب سے بڑا تحفہ عنایات میں تو وہ نے آپ کو بتایا ہی نہیں, اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں جنت میں کھانے کو تو ہے, جنت میں پینے کو بھی ہے. فرض کریں کہ گریجویشن پارٹی ہے, اسکول میں گریجویشن پارٹی ہوتی ہے نا, تو ٹیچر اسکول کو سجایا ہوا ہے اور سامنے جو ہے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں, اور جو بچے گریجویٹ ہوئے ہیں وہ کھا رہے ہیں کھانا. پرنسپل آ کے ایک بچے کے ہاتھ کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹا تم پہ بہت فخر ہے مجھے, بہت اچھا کیا تم, کھاؤ خوشی سے کھاؤ, تم نے دل خوش کیا میرا. اس بچے کا کھانا زیادہ ٹیسٹی ہے باقی سارے بچوں سے. کیوں؟ کھانے کی بات تو الگ ہے, کھانے کا ذائقہ اور ہے, وہ جو بات جو شاباش سننے کو ملی ہے نا, اچھا کام کیا تم نے بیٹا, خوب عمل کیا. جب آپ کسی بڑے سے سنتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اوہ, وہ جو ایک وہ انسان کی زندگی بدل, اس کو وہ کھانا بھول جائے گا, وہ الفاظ نہیں بھولیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ابو سے کوئی نرم الفاظ سننے کو ترس جاتے ہیں, بیٹا بہت فخر ہے تم پہ, بہت اچھا کیا تم نے, پراؤڈ آف یو مائی سن. باپ کہنے کو نہیں دیتا, وہ کچھ بھی دے دے گا, وہ گالیاں دے دے گا, تنقید کر دے گا, کبھی پیار سے نہیں کہے گا بیٹا بہت فخر ہے تم پہ. اور بیٹا ترس جائے گا ساری زندگی, ایک دفعہ میرا باپ بس کہہ دے, ایک دفعہ کہہ دے زندگی بدل جائے میری. میرا ٹیچر کہہ دیتا ہے, میرا باس کہہ دیتا ہے, میرے دوست کہہ دیتے ہیں, میرے فلاں, میرے ابو نہیں کہتے بس. اور ابو بھی عجیب مخلوق ہیں, وہ باقی سب سے تو کہتے ہیں میرا بیٹا ماشاء اللہ, او ہو ہو یہ, بیٹے سے نہیں کہیں گے. ایک دفعہ بیٹا کمرے میں آ جائے پھر دوبارہ آ گئے تم. اس کو نہیں تسلی دینی. اسی طرح اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہوں اور کمپنی میں ہزاروں امپلائی ہیں, ہزاروں ملازم ہیں, اور کمپنی کا سی ای او آ کے آپ کے ڈیسک پہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہے آپ بہترین کام کر رہے ہیں, آپ کو پروموشن دی جا رہی ہے اور آپ بہترین کام کر رہے ہیں. پروموشن کوئی بھی دے سکتا تھا, لیکن مجھے اس نے بیٹھ کے خود کہا نا کہ میں پروموشن دے رہا ہوں آپ کو, وہ اس کی زندگی کا ایک بڑا عظیم لمحہ ہو گیا. یہاں اصل جو نعمت ہے نا جنت کی, جو اصل تحفہ ہے جنت کا ان آیات میں, وہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, وہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ خود براہ راست مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تم کھاؤ تم پیو, اچھے کام کیے تم نے. سبحان اللہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, اس کا الٹا آپ سیکھتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کلاس کی مثال دیتا ہوں. یونیورسٹی میں کلاس ہوتی ہے بڑے سائز کی, جس طرح یہاں بھی ہال ہے نا, کبھی کبھی بڑے سائز کی کلاس ہوتی ہے. اور جب بڑے سائز کی کلاس ہوتی ہے تو پروفیسر بھی ہوتا ہے اور پروفیسر کا ایک اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے, پتا ہوگا آپ. تو اسسٹنٹ کا کام ہے کہ وہ پاور پوائنٹ لگا دے یا کمپیوٹر سیٹ کر دے یا پیپرز کلیکٹ کر لے سب سے, اس کا یہ کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ باقی اسٹوڈنٹس کی ٹیوٹرنگ وغیرہ بھی کرتا ہے, مدد بھی کرتا ہے ان کی, ٹھیک ہے. اب فرض کریں جو ایک سیکشن ہے کلاس کا, میں کس کی مثال بری دوں, آپ کی دیتا ہوں, ایک سیکشن نے امتحان فیل کر دیا, سوری ایک سیکشن پاس ہو گیا, یس میم, اور ایک یہاں میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ کھڑا ہے, تین ہے, ٹھیک ہے. اچھا میرا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک تعلق ہے, لیکن اسسٹنٹ کا بھی تعلق ہے ان کے ساتھ کہ نہیں ہے نا. अब मैं इस तरह मुड़ के कहूँ तुमको मैंने कम सिखाया था, कम मेहनत की थी, इतना अच्छा तुम्हारे साथ असिस्टेंट लगवाया था, जिसको मदद चाहिए थी, जिसको रिव्यू चाहिए था, क्या क्या कसर नहीं छोड़ी मैंने, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे कि तुमने ये कारनामा दिखाया है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, यू नो तुम लोग तो मुंह लगने के लायक नहीं हो। और फिर मैं कहूं देखा ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को देखो जरा। अब मैं जब अपने असिस्टेंट से बात कर रहा हूं तो मैंने उनसे क्या किया है, उनसे मुंह फेरा है, और ये मुंह पर ये पता है क्या हुआ है, अभी मुखातब से गायब, मुखातब से गायब किया ना, ये मुखातब से जो गायब करना होता है ना, ये गुस्से की अलामत होता है। मैं इतना गुस्से में हूं तुमसे कि अब मैं तुमसे बात भी करने को तैयार, तुम्हारे बारे में बात करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। समझ में आ रही है बात? असल बनू इसराइल से बात करते मुखातब होके, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ तुम पर हमने बादल का साया भेजा, وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى तुम्हारे ऊपर हमने मन्ना और सलवा नाजिल किया। मुखातिब है या गायब है? كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ खाओ उन अच्छी चीजों में से जो हमने तुम्हें रिस्क में दी है। मुखातिब है अभी तक? अब देखना, وَمَا ظَلَمُونَا वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून उन्होंने हमारे साथ ज्यादती थोड़ी की, वो तो अपने साथ ज्यादती कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती नहीं की, वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे थे। ये कौन सा सीगा है? एक ही आयत के अंदर मुखातब से गायब, ये क्या हुआ? अल्लाह ताला का गुस्सा। इसे कहते हैं तबईद, बुअद से तबईद, दूर होना। कुरान में कभी कभार कलाम के अंदर अल्लाह करीब आते हैं और फिर अपनी नाराजगी कैसे इजहार करते हैं, दूर होके, इसे तबईद कहा जाता है। एक ही आयत के अंदर वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और फिर अगर उनसे बात नहीं हो रही तो उनके बारे में बात हो रही है, और बात हो रही है अपने रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमसे। इसका एक और मज़हर देखते हैं। फर्ज करें, दोबारा क्लास की बात करता हूं, अब आपकी बारी आई, इम्तिहान मैंने सबको दिया, दो लड़के हैं उन्होंने एग्जाम में चीटिंग की और मुझे पता है उन्होंने चीटिंग की, मैंने अभी उनको सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया। एक का नाम है करीम और एक का नाम है जैद, अगर करीम और जैद यहां पर हैं मेरी माफी, ओके, एक करीम और एक जैद। अब मैं यहां आके बैठा, मैंने कहा कुछ लोग समझते हैं कि वो जो भी कर लें हमें पता नहीं चलेगा, कुछ लोग समझते हैं मेहनत करें ना करें, अपने वालदैन ने जो उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं कि वो आकर यहाँ तालीम हासिल करें, उसका वो हक अदा ना भी करें, और बाकी सब इस पूरी तालीमी इदारे की, मेरी और इस नेमत की किसी की कदर ना करें और समझते हैं कि ऐसे ही बच जाएंगे। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं। जब मैं कुछ और कुछ और कुछ कह रहा हूँ तो मैं क्या गायब का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूं या मुखातिब का? गायब, और गायब से होता यह है कि सारे बेफिक्र हो जाते हैं, कुछ लोग, कुछ लोग, मैं थोड़ी, कुछ लोग। और फिर मैं एकदम से कहूं करीम जैद इधर आना जरा, अभी वो कुछ लोगों से क्या हुआ एकदम से, करीम और जैद फकद कामत कियामतुहुमा, उनकी तो क़यामत शुरू हो गई। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं है लेकिन उनका नाम मैंने मुखातब किया ना, उन्हें जब मुखातब किया गायब से एकदम से मैं मुखातब पे आ गया तो क्या वो हाँ हमारे बारे में बात हो रही थी, हमारे बारे में बात हो रही थी। खतीब भी क्या करते हैं, मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ओए वो गायब से क्या किया उसने, और वो जब मुखातब करता है तो वो जो बैठा हुआ था ना फोन पे खेल रहा था गेम, उसको अब क़यामत का दिन याद आ गया। वो ओए से, वो गायब से क्या है मुखातब। अब यहां देखना, लियकफुरु बिमा आतैनाहुम वलियतमत्तउ, कहते हैं कि चलें करने दें इन्हें कुफर, करने दें इन्हें नाशुक्री उन तमाम चीजों की जो हमने उन्हें दी है, करने दो इनको, एंजॉय, मजे करें, يتمتعوا کرنے دیں انہیں. انہیں کیا صیغہ ہے؟ پھر کہتے ہیں آخر میں وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, بہت جلد جان جاؤ گے تم سب, تم سب. سبحان اللہ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: اللہ تعالیٰ کو کیسا غصہ آتا ہے, تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض, آسمان پھٹنے تک آ جاتے ہیں, زمین دو ٹکڑے ہونے تک آ جاتی ہے ہر دفعہ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا نے بیٹا لیا. آسمانوں اور زمینوں سے برداشت نہیں ہوتا یہ. ایسا غصہ اللہ کا کس بات پر کہ کوئی کہے کہ خدا نے بیٹا لیا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ.

अगर आप इंस्पायर एफएम के किसी प्रोग्राम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए inspireFM.org और सुनिए अपने पसंदीदा प्रोग्राम।